0: You are listening to 89.4 Tamil FM.
1: Bro, I need a OCB, bro. OCB. It's not OCB. It's OCB.
2: जी OCB मिलेगा क्या मच्छी? किधर मिलेगा? अरे OCB चाहिए यार मेरे को. OCB किधर मिलेगा?
3: No, इधर मिलेगा.